0: Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स